इतने पगो स्पीच तेज किताबों के तमो अमीन को सो ना लगे हो यार नहीं सक मिस्ते को ने से से वे गेगा एक तब तो देता उस दिन ना कि चौस मिस्स